चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान बिवेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद हो वाणा।

आठ पहर गुण गावा। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, छोड़ सयानप सगल मन तन अर।

0: तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कि जानला, सब किश तेरे वस, तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जाए, सर्व कला भरपूर दिस जत कता, नानक दास दास तुद आगे बिनवता।
1: सुलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुहदाई दाया खेल सगले जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़ के दू जिनी नाम ते आया गए।

पौड़ी वडी वडा अपा तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक न जापन करतवा, जी अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वास तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वधाए तुद कर, मान महता तेज अपना आप जान, सर्ब कला पर

गोविंद दास तुहार, सगल द्वार कौ छाड़ कर गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार, बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार।

पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तगावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शबद तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित घर सभागै घर सभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और धारो

सदता सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत।

गुरसिख हो गुरसिख है, पीर पीर हो कोई, शब्द सुरत चेला गुरु, परमेश्वर सोई, दर्शन दिष्ट ध्यान धर, गुर मूरत होई, शब्द सुरत कर कीर्तन, सत संग विलोई, वाहे गुरु गुरमंत्र है, जप हौ मैं खोई, आप गवाए आप है, गुण गुणी परोई, जाकै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जनम मरण भय दुखी, चार पदार्थ नव निद पावै, बहुर ना तृष्णा भुखी, जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास ते आवहु ठाकुर कौ, मान तन जियरे मुखी, शांत पावह होवह मन शीतल, अगन नयंतर तुखी, गोर नानक कौ प्रभु दिखाया, जल थल त्रिपवन रुखी, विसर नाही दातार, आपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राख हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, अंदर सच्चा ने हो, लाया प्रीतम आपना, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुवाय, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, हुआ सिफत खसम दी, नूरे अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दाय साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दाय, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सत नाम।

गोपाल तेरा आरता जो जाना तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहा दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन निका अनाज मंगा सत सीका गऊ

गौ पैस मंगौ लावे रे, एक ताजन तुरे चंगे रे, करके गीहन चंगे जन तन्ना लेवा मंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉट बिख बिख खाई, माया मो परम पै पूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, इकितम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख सरनाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख सरनाई, सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदशाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावेसा, सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदशाह। जिस पास बैठिया सोही है,

हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण हों बल बल जाओ रमैया कारने

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई,

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

आद गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है। उठ स्नान करहो प्रभाते।

हमें अवगुण पते एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिकाई, माया मोह परम पै भूल।

है मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सरना।

ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास।

थलवारोले बौतन लटू मधानिया अनगा पंखी पौंदिया ले नसा सुए चाड़ पवाइए जंत नान पौंदिया गंत नानत बंधन बन पुआए सोए पया किरत नचै सब कोई नच नच हसै चले सिर उड़ना जाई सिद्ध ना होए नचे।

0: हम च हसे हम च रोवे हम च परिये हम च तोवे हम विच जाति जिन सिखोवे हम विच मूर्ख हम विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हम विच माया हम विच छाया हमें कर कर जंतु पाया हमें बूझे तांदर सुझे ज्ञान में होना कत कत लुजे नानक हुक्म लिखी है लेख जिहा वेखे तिहा वेख मल्ला दूजा
1: हमे एहा जात है हमे कर्म कमाहे हमे एही बंदना फिर जो नी पाहे हमे कितों उपजे के

0: तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां।

पहला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़।

0: पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवे दाल जे एक होए ता गवे रुति हुरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए पै विच खुंभ चढ़ाइए शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार कामने सत पुछिए बैबे करे बिचार अंधी रैयत ज्ञान में हुनी पाए परे मरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत उज्जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जती सदावे जुगत ना जाने छड़ बहे करवा सबको पूरा आपे होवे।

पवित्र कर्म जिना को तुद पाया तत नी खसम ते आया इना जनता के बस किश नहीं तुद वेकी जग तू पाया प्राण तू मेरे ने कप तुद को आया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद्या बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।

तपस्या तेरा अंत में जाई लख रहा हो। जात में जोत जोत में जाता कल कला पर पूर रहा है। तू सच्चा साहब सुरत सवालो जिनकी दिसो पार पया कौ नानक कर दे बात जो किस करना सो कर रहे।

0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव सुजे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला पहला
1: बेपत्ता जल रह जल बिन कुंभ ना होए
0: बदा मन रहे
1: गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़ी।

रे मनमूस बिला में गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत।

0: पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्ण बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान पापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो न जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो न जात रहो जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
2: उद्दम कर लागे बहु पाती बिचरे अनिक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीरथ बहु भ्रमते सूखम देह बंदे बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोम पाका अनेक पात ठाटे कर ठटुआ।
3: गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो। मा दाता गुण रवे जैन चकर वै कहायो। गुण गावे बलराओ सपत पाताल बसंतो। परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो। दूर बा परूरो अंगरे गुर नानक जस गायो। कब काल सुजस नानक गुर काट काट सहज समायो।
4: अब राखो दास पाठ की राज जैसी राखी राज। भगत प्रहलाद की हर नाकस फाड़े कर आज। सुन द्रौपदी राज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोसाज सो दामा अपदा ते राखिया। गन का परत पूरे ते काज। श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की राज जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जिया की तपत मिटावे। जेह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।
5: सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो। उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो। कलयुग

0: की गोरे राम दास राखो सरना।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, राग सूही शांत महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार।

लागे मिले संत प्यारे गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारे सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागै बिनवंत नानक सरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगै अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन

साधु प्रभ अराधु आपने प्रभ पावा बेनवंत नानक दया तारह सदा हर गुण गावा।

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज, पंथ की जीता, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोल जी वाहे गुरु, बोल जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे, जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीमा, मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे, जिन्ना तो पंथ नू वसोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार, ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो, हे नमानिया दे मान, नतानिया दे तान, नियोटिया दी ओटा, तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी, आनंद साहेब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी, सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है, तिन्हां दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ। सरबत साध संगत नू आपने दरों घरों, सिखी सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना, सब भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कराह प्रसाद दी देग हाजर है, दर परवान होवै। परवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। सुख होवै नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा।

सिमल रुख सरारा अत दीर्घ अत मच ओए दे आवे आस कर जाए नरासी के तो फल फिके फुल बक बके काम नावे पत मिठ तिनी भी नानका गुण चंगे आईया तत सब को नवे आप को पर को नवे ना कोए तर तराजू तोलिया नवे सो गोरा होए।